कईयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।

बीमा को लाभ दी आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनौ सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स खुले र जियौ।

जनहित का लागि नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय को सहयोग रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकार्यमा कुष्मा नगरपालिका पर्वत

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

आवाज बहन को आवाज परिवर्तन को संवाहक रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज नेपाली मूवीज चैनल।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जीऊ।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनाओ सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ
1: रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले दिउँसोको ठीक एक बज्यो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ।
1: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगा

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: बीमा को लाभ दी आप कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भंडारी चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरा में
2: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भंडारी आइतबार देखि शुक्रवार सम्म साझा 5 बजे पछि अथवा आवश्यकता अनुसार यस चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरा में आउनु हुने भएकोले समयमै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला।
1: उपचार सेवाहरू
2: भेरिकोस भेनको लेजर उपचार खुट्टाका सुन्निएका तथा फुलेका नसा लेजर प्रविधि बिना ठूलो चिरफार उपचार करने विधि
1: अल्ट्रासाउंड तथा सिटी गाइडेड बायोप्सी प्रक्रिया मासू को टिश्यू नमूना लिएर रोग जस्ते ट्यूमर पता लगाउने प्रक्रिया
2: रक्त नली संबंधी रोग उपचार एंजियोप्लास्टी स्टन्ट राख्ने प्रक्रिया इम्बोलाइजेशन
1: कैंसर उपचार ट्यूमर एब्लेशन तथा विशेष थेरापी सानो चिरफार मिनिमल इन्वेसिव विधि ट्यूमर नष्ट करने उपचार
2: शरीर में जमा भएको पस वा असामान्य तरल पदार्थ निकाल्ने प्रक्रिया
1: पाठीघर को मासु युटेरिनल फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन पाठीघरमा भएका फाइब्राइड मासुका गाँठालाई शल्यक्रिया नगरी उपचार गर्ने विधि आदि
2: थप जानकारीका लागि चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुंगा पोखरा फोन 061-582-7878-582-7979-582-7880
3: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

जनहित का लागी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को सहयोग रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकार्यमा कुसुम नगरपालिका पर्वत

तो ये है OnePlus Nord CE 6 और इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखते हो तो बॉक्स में आपको 80 वॉट का सुपर वुक पावर एडाप्टर मिल जाता है और साथ में टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल है और बॉक्स के अंदर आपको केस कवर मिल जाता है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का है और इवन पहले से प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगकर आता है। बाकी क्विक स्टार्ट गाइड, सिम इजेक्टर टूल सब कुछ आपको बॉक्स में मिल जाता है। तो देखो कलर की बात करोगे तो 3 कलर ऑप्शन आते हैं जिसमें से एक कलर मेरे पास है फ्रेश ब्लू। और स्टोरेज की बात करोगे तो 2 स्टोरेज ऑप्शन मिलेंगे 8/128 और 8/256 और दोनों आपको UFS 3.1 की स्टोरेज पर आएंगे। बाकी फोन के बिल्ड क्वालिटी पे देखते हो तो बैक साइड आपको पॉली कार्बोनेटेड बैक मिलता है और कॉर्नर में हल्की सी एक शाइन रहेगी, ऐसी 3D टाइप की इफेक्ट निकाल के देगा और फ्रेम भी प्लास्टिक देखने मिलता है और वन प्लस जो काफी टाइम से कैमरा मॉड्यूल का जो हाउसिंग है उसकी डिजाइन फॉलो कर रहा है वो भी हमको यहाँ पर दिखती है। बाकी वेट भी यहाँ पर ठीक है, काफी ज्यादा बड़ी बैटरी है उस हिसाब से अगर कंसिडर करोगे तो 8.5 mm की थिकनेस आती है। टाइप सी 2.0 निकल कर आता है, IR ब्लास्टर है जिससे आप अपना टीवी AC वगैरह कंट्रोल कर सकते हो और जिम जाते हो तो भाई वहां पर चुपचाप कंट्रोल कर सकते हो बिना किसी को रिमोट मांगे। डुअल नैनो सिम स्लॉट मिलता है, टोटल 3 माइक्स है, NFC इसके अंदर नहीं आता। बाकी रही बात IP रेटिंग को लेकर तो ये IP66, IP68 और IP69 और इवन IP69K तक की रेटिंग मिल जाती है तो हाई प्रेशर वगैरह वाटर भी इस पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में भी फोन अच्छी तरीके से आपको बिल्ड क्वालिटी निकाल के देता है और इवन मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड भी मिल जाते हैं तो इनकेस अगर गिरता विरता है तो ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी डिस्प्ले पे जो प्रोटेक्शन आती है वो क्रिस्टल गार्ड ग्लास देखने मिलता है जो वन प्लस ने अपना खुद ही ओन डेवलप करा है इस ग्लास को, तो जिस पर आपको ड्रॉप एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट दिखने मिलता है तो फ्लैगशिप लेवल ग्रेड तक का आपको एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड कर देता है। बाकी अगर एक्स्ट्रा देखते हो ना तो डिस्प्ले पर अगर पानी वगैरह भी गिर जाता है, आपके हाथ गीले हैं, तो डिस्प्ले अच्छी तरीके से वर्क भी कर लेगा क्योंकि एक्वा टच 2.0 मिलता है। और देखो ये जो वीडियो है ना ये कोई टोटल रिव्यू नहीं है, यहाँ पर हमने फोन के साथ मुझे ऑलमोस्ट है ना 4 से 5 दिन हो गए यूज करते हुए, कहाँ पर क्या स्पेक्स थे, क्या फीचर्स आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक लॉन्ग टर्म डिटेल रिव्यू निकालने के लिए कम से कम 10 दिन देना पड़ेगा, उसके बाद इसका एक डिटेल रिव्यू आएगा। तो अभी लेकिन जितनी ज्यादा मेजर चीजें हैं जो आपको हिडन हो सकती थी हम पूरी बाहर निकाल के दिखाऊंगा। तो अगर अभी डिस्प्ले पर आते हैं तो एमोलेड 6.78 इंचेस का डिस्प्ले है 1.5 की रेस के साथ में और ये डिस्प्ले 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट निकाल के देता है, पर यहाँ पर ज्यादातर जो एप्लीकेशन है ना या UI है वो 120 हर्ट्ज पर चलता है। कोई ऐसा गेम है जहां पर पीक करना है 144 हर्ट्ज वगैरह या कोई ऐसी एप्लीकेशन है तो वहां पर ये पीक कर जाता है। बाकी इस पर जो HBM आता है ब्राइटनेस को लेकर वो 1800 निट्स का है। सिंपल है भाई, डिस्प्ले इंडोर में तो कोई दिक्कत नहीं है और हार्श लाइटिंग के अंदर सनलाइट में कोई प्रॉब्लम में ऐसे विजिबिलिटी को लेकर इश्यूज आना या दिख नहीं रहा ऐसा कुछ नहीं है। लो लाइट सिनेरियो में आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस कमी रखनी पड़ती है, इतना ज्यादा डिस्प्ले पीक मार जाता है ब्राइटनेस को लेकर। और इस डिस्प्ले पर आप जो भी कंटेंट देखना चाहते हो कलर एक्यूरेसी वगैरह काफी आपको अच्छी लगने वाली है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बहुत ज्यादा कम कर दिया है, डिस्प्ले पे बेजल्स भी काफी कम दिखते हैं और नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट है, कॉन्टेंट आप इजिली देख सकते हो यूट्यूब पर भी और इवन नेटफ्लिक्स पर भी। और लो लाइट के अंदर है ना आई केयर आता है तो आंखों पे कोई ऐसे स्ट्रेन पड़ना या तकलीफ होना वो सब नहीं होता। PWM डिमिंग का नंबर भी अच्छा दे रखा है। स्पीकर भी देखते हो तो डुअल स्पीकर आता है, तो अगर आप रील स्क्रोलिंग वगैरह कर रहे हो, कंटेंट देख रहे हो यूट्यूब वगैरह पर, आपको स्पीकर का आउटपुट लो नहीं लगने वाला है अच्छी तरीके से। बेसिकली मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका अच्छे से हो जाएगा। बाकी इसमें आपको वन प्लस का डायलॉग मिलता है तो कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट का ऑप्शन मिलता है, आप ऑन रख सकते हो या ऑफ रख सकते हो। बाकी देखो इसमें जो बैटरी इस बार एड ऑन हुई है वो है 8000 mAh की बड़ी बैटरी। ऑल्सो ये आपको मतलब बैटरी बैकअप इजीली मैं कह सकता हूँ 2-2.5 दिन तक के ऊपर तक का निकाल के दे देगा नॉर्मल सिनेरियोस में। और बॉक्स में आपको 80 वॉट का चार्जर मिलता है और रिवर्स वायर चार्जिंग ऑप्शन मिलता है, 27 वॉट तक का आउटपुट निकाल देगा, मतलब आपके पास कोई और डिवाइस है या बर्ड्स है वहां पर उनको चार्ज कर सकते हो आप इस एज अ पावर बैंक। और हाँ गेमर्स के लिए बाईपास चार्जिंग भी मिलता है। तो अगर आप कहीं से भी ऐसे नॉर्मल कैजुअल यूजर हो जिसमें आप अपना इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कॉल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ऐसा छोटा मोटा कुछ करके कर लेते हो तो 2-2.5 दिन तक के ऊपर ऑफिशियली ये निकाल लेगा बैटरी बैकअप। और अगर आप थोड़े भी हैवी यूजर हो तो वहां पर 1.5 दिन तक के ऊपर तक का बैटरी बैकअप ये खींच के दे देगा। ऑफकोर्स यहां पर आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल जाता है। और अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन ऑन टाइम बता दूं हल्का सा, तो अगर आप यूट्यूब इस पे कंटिन्यूस चलाओगे तो आराम से आप इसमें 30 घंटे तक के ऊपर तक आप प्लेबैक कर सकते हो और BGMI खेलना है तो 9-10 घंटे आराम से चला देगा। और गूगल मैप नेविगेशन वगैरह तो भाई 15 घंटे के
ऊपर बेसिकली मिल ही जाएगा, 17.5-15 घंटे मिल जाता है। व्हाट्सएप कॉल वगैरह अगर कंटिन्यूस करते रहना ही है 17 घंटे तक बातें कर सकते। तो जब ये हमारे पास फोन आया था चार्ज होकर आया था, तो मैंने इसकी बैटरी को पूरा खत्म किया और हमने चार्जिंग टेस्ट करके देखा जो बॉक्स में चार्जर आ रहा था, तो 0 to 50% अराउंड 39 मिनट्स में हुआ और फिर 50 to 100% अराउंड 44 मिनट में हुआ। तो टोटल करोगे तो अराउंड 1 आवर 23-24 मिनट होते हैं पूरा 0 to 100% फोन चार्ज होने में। तो इसकी जो 8000 mAh की बैटरी है इसको हम लोग को कंप्लीट ड्रेन आउट करना था और कितना देर चलता है वो देखना था। तो YouTube पर हमने 1080p तक का कंटेंट लगाया, रात के 8:30 बजे हमने इसको लगा के कंटिन्यूस लगा के छोड़ दिया। बड़ी वीडियो थी, मतलब 15-20 घंटे की वीडियो होगी, वो चली रही थी और सीसीटीवी से वैसे फुटेज हम रिकॉर्ड कर रहे थे, डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे। और देखो हमने फिर जो वीडियो लगाया था ना, शायद से छोटा वीडियो लगाया था, पूरी रात वाला ना लगा के थोड़ा ही लगा दिया, तो रात के 3 to 4 बजे के बीच में वो बंद हो गया। फिर सुबह हमने 9:30 बजे उसको वापस चालू करा जहां पर जितनी भी बैटरी पेंडिंग थी, तो अराउंड 4:30-5 बजे के आसपास इसकी जो बैटरी थी वो खत्म हो गई। तो जो टोटल रन टाइम हुआ ना, जो बीच का गैप छोड़ दो, तो वो टोटल आपकी स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रहा है। तो ऑफकोर्स बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल जाएगा और चार्जिंग स्पीड भी अच्छी तरीके से रन करवा देता है। बाकी प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर, तो जिसका नियर बाय एंड्रॉइड स्कोर हमारी टेस्टिंग के हिसाब से 1.1 मिलियन के आसपास हमको देखने मिला, इवन थोड़ा ज्यादा ही देखने मिला। तो अगर पिछले बार का प्रोसेसर देखते हो ना, जो OnePlus Nord CE5 में आया था वो Dimensity 8350 था, जिसके एंड्रॉइड स्कोर या जो पावर है वो अराउंड 1.3 और 1.4 मिलियन के आ रहे थे, और इस बार जो एंड्रॉइड स्कोर है वो थोड़े से पिछले बार से कम देखने मिल रहे हैं। बाकी UFS 3.1 की स्टोरेज है। फिर अगर हमने एंड्रॉइड के बाद में CPU थ्रॉटल करके देखा, तो जहां पे 88% तक का CPU थ्रॉटल देखने मिल रहा था, और Geekbench अराउंड सिंगल कोर, मल्टी कोर और GPU पे भी स्कोर्स आप देख सकते हो, टेस्टिंग हमने करके देखी थी। वैसे तो जितने भी डेली टास्क होंगे वो सब कुछ स्मूथ तरीके से एंड फास्ट तरीके से रन करा देगा। प्रोसेसर में इतनी अच्छी खासी पावर तो बेसिकली देखने मिल ही जाती है। और अगर आपका BGMI की बात करोगे तो वहां पर स्मूथ पे 90 FPS अनलॉक करता है, और मैंने जितना खेल के देखा है तो वहां पर आराम से इसने जो FPS हमको निकाल के दिए थे वो 70 FPS के नियर बाय के एवरेज FPS आ रहे थे। फिर से सेकंड हमारा टास्क था, तो वहां पर 72 तक के हमको FPS देखने मिले एवरेज, जिसमें हमने हैवी एंड गेमिंग करके देखी थी, और टेम्परेचर भी जो 41-42 डिग्री तक मैक्स गया था। फिर जो COD मोबाइल था वहां पे 90 FPS खेल रहे थे जो सेटिंग अनलॉक थी, तो वहां पर एवरेज 62-63 तक के देखने मिले। फिर नेक्स्ट जेंशन इम्पैक्ट जैसा हैवी गेम खेल के देखा, जहां पे 60 FPS आ रहे थे, तो वहां पर हमको एवरेज 35 तक के एवरेज गेमिंग करने मिल जा रही थी। फिर जो कार स्ट्रीट गेम हमने ट्राई करके देखा, तो एवरेज 27-28 तक के FPS आ रहे थे, और बहुत हैवी ग्राफिक्स गेम है वैसे ये बता दूं मैं। बाकी कुछ ऐसे गेम्स है जो 144 FPS नेटिव सपोर्ट कर जाते हैं, जैसे कि क्लैश ऑफ क्लैन हो गया, क्लैश रॉयल हो गया, सबवे सफर हो गया, जहां पर हमको 120 FPS सपोर्ट देखने मिल जाता है। तो इतना कहूंगा कि BGMI के लिए जो गेमिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपको इजिली गेम प्ले एक्सपीरियंस मिल जाता है नियर बाय 70 तक का, तो TDM खेलोगे तो वहां पर बेटर 90 वगैरह तो आ ही जाएंगे, बट जो हार्डकोर गेमिंग है ना वो भी वहां पर पॉसिबल वे में हो जाती है 70 और 80 तक के बीच के जो एवरेज FPS बेसिकली आ रहे थे। और अगर आप जायरो गेमर हो तो वहां पर जायरोस्कोप गेमिंग भी आपकी अच्छी तरीके से परफॉर्म करवा देता है। बाकी नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी में 11 5G बैंड्स आ जाते हैं, Wi-Fi 6 देखने मिलता है, डुअल बैंड वगैरह में भी सपोर्ट कर लेता है। और फिर हमने इसको नेटवर्क की स्पीड टेस्ट भी करके देखी थी, Wi-Fi और सिम पर भी, दोनों टेस्ट आपके डाउनलोड एंड अपलोड आपके स्क्रीन के सामने है। टोटल 39 सेंसर इसके अंदर आपको मिलते हैं, और बाकी डेडिकेटेड जायरो हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, एक्सेलेरोमीटर हो गया, सब कुछ आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है जितने काम के सेंसर है बेसिकली। और इवन एक कलर टेम्परेचर सेंसर भी मिलता है डेडिकेटेड हार्डवेयर के थ्रू। और फिंगरप्रिंट सेंसर आता है जो कि है इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, बट मोस्ट ऑफ सभी सिनेरियो में अच्छी तरीके से चीजें अनलॉक कर देता है, और फेस अनलॉक भी आपको मिल जाता है। इवन अगर आप डार्क लाइट या ब्राइट लाइट में देखोगे तो वहां पर दोनों सिनेरियो में अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। बाकी आपको ऑक्सीजन ओएस 16 के थ्रू ऐप लॉक और इवन हिडन स्पेस भी मिल जाता है। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस OnePlus का अच्छा ही देखने मिलता है, जहां पर आपको एंड्रॉइड 16 के साथ में ऑक्सीजन ओएस 16 आता है, और ओएस अपडेट आपको 2+4 तक का देखने मिल जाएगा। ऑक्सीजन ओएस 16 के अंदर आपको OnePlus का क्लीन नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस स्कीम के साथ में मिल जाता है, जिस पर आपको मिनिमल थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर आते हैं, और लेकिन फास्टर परफॉर्मेंस और UI में कस्टमाइजेशन भी काफी अच्छी मिल जाती है, और एनिमेशन हो गए स्पीड वगैरह को लेकर, और इवन कोई स्टटर वगैरह ऐसे कोई मेजर हमको देखने नहीं मिले अभी तक। तो बाकी होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी आपको अच्छी मिलती है, आइकन हो गया, ग्रिड लेआउट वगैरह हो गया, विजेट्स वगैरह, इवन लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी आपके काम की चीज देखने मिल जाती है, और इवन फॉन्ट चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो सब भी पॉसिबल अंदर। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको मिलता है, और हैप्टिक के लिए यहाँ पर एक्स एक्सिस लाइनर मोटर मिल जाती है, तो हैप्टिक्स वगैरह भी बहुत जगह पर आपको अच्छी फील हो जाती है। और बाकी कुछ OnePlus की ब्लोटवेयर एप्लीकेशन आती है, गूगल की एप्स वगैरह भी आपको अंदर मिल जाती है। बाकी कुछ एप्लीकेशन है जो आप रिमूव कर सकते हो और कुछ को आप नहीं कर पाओगे। और मल्टीटास्किंग के लिए स्प्लिट स्क्रीन हो गया, फ्लोटिंग विंडो और इवन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एक्स्ट्रा टास्क वगैरह आपको करने के लिए मिल जाते हैं। बाकी आपको AI के अंदर भी टर्म्स ऑफ चीजें मिल जाती है, जिस पर आपको सबसे पहले सर्कल टू सर्च हो
गया, गूगल जेमिनी लाइव मिलता है, और उसके बाद में वन प्लस के एआई है जिस पर आपको एआई पोर्ट्रेट ग्लो मिल जाता है, और साथ में परफेक्ट शॉट है, एआई इरेजर है, और भी टन्स ऑफ चीजें हैं जैसे एआई अनब्लर, एआई रिफ्लेक्शन इरेजर, और भी काफी यूजफुल एआई आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अब अगर कैमरा देखते हो तो 50 MP का मेन कैमरा आता है, बाकी अल्ट्रा वाइड वगैरह तो नहीं है, और सेल्फी में आपको 32 MP का कैमरा मिलता है। और रही बात वीडियो में, तो बैक साइड आपको 4K 30 मिलता है शूट करने के लिए, 60 FPS नहीं है, बट फ्रंट में आपको 4K 30 FPS दे रखा है, तो काफी अच्छी डिटेल क्वालिटी के साथ में फ्रंट से वीडियो आप बना सकते हो। बाकी अगर कैमरा में देखोगे तो शटर लैग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, यूआई अच्छी तरीके से परफॉर्म कर जाता है कैमरा के अंदर। और अगर कैमरा क्वालिटी में देखोगे तो डायनेमिक रेंज वगैरह, एचडीआर वगैरह अच्छी तरीके से प्रोसेस कर लेता है, डिटेल लेवल वगैरह भी अच्छी तरीके से निकाल लेता है। लो लाइट में भी आपको एआई प्रोसेसिंग के थ्रू जो आउटपुट निकल कर आता है वो थोड़ा सा बेटर ही आउटपुट निकाल के दे देता है। बाकी डे लाइट की फोटो में मैंने इसको ट्राई करके देखा है, मैं एक फ्रेंड की वेडिंग पे इस फोन को लेकर गया था, और आप सैंपल्स देखो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आते हैं, अच्छी लाइटिंग में भी, इवन 1x 2x वगैरह के अंदर भी। और बाकी इसमें आपको ना कुछ फिल्टर्स वगैरह मिलते हैं ड्रीमी लुक वगैरह को लेकर, तो ये वेडिंग में भी काफी ज्यादा अच्छे निकल कर आ रहे थे, और इवन 1x हो गया, 2x डिटेल्स वगैरह हो गया, वो भी अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेता है, और जो स्किन टोन्स वगैरह है ना उनको भी नेचुरल वे में प्रोसेस कर लेता है। समटाइम कभी कभार कोई फोटो ऐसी डार्कर लग सकती है, बट वो एक आध दो ही फोटो हो रही होगी, बट आपकी जो फोटोज है खास करके पोर्ट्रेट में जो आउटपुट भी निकल कर आता है वो भी काफी अच्छी अप्रोच लगती है इसके अंदर। तो ये फोटो के अंदर है ना जहां पे मतलब थोड़ा लाइटिंग कंडीशन थोड़ी सी चैलेंजिंग थी, तो यहां पर एआई ग्लो वगैरह थोड़ा सा हमको देखने मिला, जिसकी वजह से फेस का पॉपिनेस काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आया है। और सेल्फी वगैरह भी देखोगे तो वो भी अच्छी लाइटिंग कंडीशन में भी पोर्ट्रेट और नॉन पोर्ट्रेट वगैरह भी अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेता है। लो लाइट के भी कुछ सैंपल्स हमने ट्राई करके देखे हैं, वो भी अच्छी तरीके से प्रोसेस है, बट डे में बहुत अच्छी तरीके से कैमरा परफॉर्म करता है। सो ओवरऑल देखोगे तो स्ट्रांग डेली शूट वगैरह के लिए आपको अच्छा मिल जाता है, और सोशल मीडिया रेडी थोड़ी सी फोटोज वगैरह आपके सामने निकल कर आती है। तो कैमरा के जो ओवरऑल आउटपुट है भाई वो मुझे पसंद आया है। वेडिंग में भी जो मैंने फोटोज ट्राई करके देखे थे, जब आउटपुट देखा तो मुझे ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ कि भाई मैंने कोई अच्छे फोटो नहीं लिए, भाई काफी ज्यादा अच्छे फोटो लिए, और जिनकी दोस्त की वेडिंग थी उसको भी भेजा, उसको भी पसंद आया। नाउ अगर स्टार्टिंग वेरियंट की प्राइसिंग हम चेकआउट करें तो वो आती है 30,000 रुपीज विदाउट ऑफर, विद ऑफर आपको 2,000 तक ऑफ मिल सकता है, जिस पर आप 28,000 तक नेट इफेक्टिव प्राइसिंग इसकी मिल जाएंगी, तो 28 लोएस्ट आप इसे ग्रैब कर सकते हो। अब यहां पर जो प्राइसिंग मार्केट में है, जो चिप शॉर्टेज और चिप की वजह से जो अदर चीजों की प्राइसिंग बढ़ी है, तो उस हिसाब से अगर इस फोन का जजमेंट लेते हो ना, तो वहां पर एक अच्छा कैमरा ओवरऑल अगर देखते हो, एक बड़ी बैटरी एक्सपीरियंस भी काफी अच्छी तरीके से आता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस भी है उस प्राइसिंग के हिसाब से भी चीजें अदर अच्छी तरीके से कर लेता है, और बाकी ऑलराउंडर पैकेज अगर देख रहे हो तो अच्छी तरीके से नॉर्ड सी E6 बना के देता है। बाकी ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया। बाकी अगर आपको लगता है कि इस फोन का कंपैरिजन भी किसी डिवाइस के साथ होना चाहिए प्राइसिंग को लेकर, तो कमेंट में जरूर बता देना, आपको कैसा फोन लगा है वो भी जरूर बता देना कमेंट के अंदर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वाली वीडियो देख लेना।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 5 बज्यो।